0: सबने ट्यून इन किया है 107.7 आपका अपना स्टेशन और अपना म्यूजिक
1: प्रेजेंटेड बाय वॉलंटियर्स एंजॉयड बाय द कम्युनिटी 107.7 FM ट्रिपल वाई योर स्टेशन